0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अंतरिक्ष आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनिल कुमार दसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषज्ञ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है।

वध के बाद युद्ध भूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाथ ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाथ के कुछ वाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नाग पाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जाम्बवान पर आक्रमण किया, लेकिन जाम्बवान ने वही त्रिशूल अपने हाथों से ग्रहण कर मेघनाद पर प्रहार किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा।

आप सुन रहा था श्री रामचरित मानस गान भूपेन्द्र सिंह स्वरमा प्रसारण आकाशवाणी भूज केन्द्र पर करवामां आव्युं। हवे थोड़ी ज वार में संस्कृत में त्यारबाद हिंदी में त्यारबाद अंग्रेजी में समाचार अमे दिल्ली थी रिले करीशुं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता

0: राज्य का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अंतर आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसेलवेंका ने एक पत्र में कहा कि उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराटे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखट आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आभूषण और सामान संबंधी औपचारिकता पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत के हब एंड स्पोक विमान योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारन के वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुंदर भक्ति रचना आप सांभळी भक्ति संगीत नो कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी ने भूज केंद्र पर थी सांभळी रहा छो। कार्यक्रम ना अंत में सांभळी श्रेया घोषाल अभी साथियों ने

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं मनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के

सवा लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना का 5 हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने बेंगलुरु में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई

0: किया थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। वह

0: की प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: विश्व क्रिकेटरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दसानायका ने पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ नई गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराटा ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 की बाद से शासन राजनीति और सार्वजनिक चर्चा ने भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है।

0: नहीं आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एंटी गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने

0: अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, आप थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमएजी पे लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है, तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं।

लाख 20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सत्यान अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: poradaśmy z Rabu Chodziego. Ogólnie takie pasem wiki sobie płacze helikopter pogrodzony i zarobny wikony i rąk po hrundykiele, a wykonany batalka helikopter pogrodzony drunny grata, a lagi dunny paletą po butali jaga. Udol irany dikrzyt mam wiki takarą po masali o drun dogie.
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशन, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली है। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामोनी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा।
0: क्रिकेट में इंडिया ए में कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और देश के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओकू में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को

बुरे हुए हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों के पार भी कल के प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रूपये की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तक पर अमरीकी सड़क का पहुंचा

0: से शुरू होने के पहले मैच में श्रीलंका 108 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।

कार्यक्रम सुनदल पांजे मेरे भाई बहन के चंदू भाजा जिझा करेंगे राम राम राम राम राम राम मेरे वहा रेहान कार्यक्रम में पा खासा वार्तालाप मुलाकात सुनो बैठा ने हिन मिझा सुने समझे जेड़ी घालू वे नित से कार्यक्रम सच्चे अर्थ में रेहान बने कच्छी कार्यक्रम में कच्छी भाषा ने कच्छ प्रदेश की गालवे तड़े कच्छड़ो बारे मास ई चोवाजे तो कला कमी ओछो वधी थी पर कचड़े में रोंदल कच्छी मारू जी कच्छियत सबर मानसाई में वधगट न थी भला हेड़े कच्छ प्रदेश की गाल करू तो हेडा प्रदेश सोको पर मारू लीला छम भला हेम सोके मुलक में कई अड़ी वनस्पतियों झाड़ पन्न वेला गा थिए था जो आयुर्वेद में हिम जो अव्वल थान आए एडा कठिन परिस्थिति हुदे एडा नोखी नोखी जात जी औषधीय वनस्पति होगी निकरे थी जो आयुर्वेद में लोक चिकित्सा में थान धराई थी हेम छोड़ जा उपयोग बरो उद्रस चमड़ी जा रोग पाचन तंत्र जा रोग ने रोग प्रतिकारक शक्ति के वधारेला थिए था कच्छ जी वनस्पतियों खाली आरोग्य लाज न पर्यावरण के संतुलन करे महत्वपूर्ण भूमिका भजवे थी नेत्रे ही अमूल्य कुदरती संपत्ति जो संरक्षण ने जतन केणो पांजी फरज आए रिहान कार्यक्रम में अज ही औषधीय वनस्पति जी गाल इतरे केणी पई क अज एरोज खास वार्तालाप सुनदासी ये वार्तालाप जो मथर है उपयोगी वनस्पति गुगर के भचायो नहन विषय ते वार्तालाप चौदा देसलपुर वाधा जा पर्यावरणविद श्री मोबसी सोढ़ा साहेब ने सोढ़ा साहेब एक पर्यावरणविद जाए आयुर्वेद जा जानकार आए बेराबेर खेडू पाए तो माटी साथ जोड़ायेल हिंद मारू के गुंड मेड़े पर्यावरण जे जतन करेला करे ने एवोर्ड में सम्मान पर मिले आई तो हेरा पर्यावरणविद श्री मोबसी सोडा साहेब जी थोड़ी गाल ने हिंद जो वार्तालाप जरूर से सुनदासी पाचो कार्यक्रम जी शुरुआत करे भजन से ने सुनो ही भजन निरंजन पंड्या जी आवाज में

0: खेड़ूत सम्मान, एंकर वाला ऐसाधाम सम्मान, वीआरटीआई सम्मान। तो इतना मेरे सम्मान ने अवॉर्ड इनके मिले हैं, लिस्ट तो लंबो है, पर इनसे पाके खबर पे कहीं कितना विधवान है। तो जो कोई सोडा साहब के अवॉर्ड में सम्मान पर्यावरण ने कृषि क्षेत्र मिले हैं, इधर चेजो कारण इतरोज का जनवटा वार्तालाप सुनोता उन्हें जी विद्वता विषय जो उन्नपूर्वक जो ज्ञान कितना ऊंडो ही पाके श्रोताएं के पा खबर पे ये हेड़ा विद्वान पर्यावरणविद पांजे आकाशवाणी भजला पे जो समय काटी ने वार्तालाप दिया ही जन जी महानता है। चेजो न चोजियाचो सुनो वार्तालाप श्री मोहम्मद सिंह सोडा साहब वटा उपयोगी वनस्पति गुगर के बचाइयों।
1: मुझे नाम मोहम्मद सिंह मोहम्मदी सिंह नाम मांडा है कालू बोझ जिलो कच्छ। मुझे कम खास तो पर्यावरण जो है कि वर्षा के पानी रोके जो अने बचाए जो वन्य जीव इन्हीं के इन्हीं जो संवर्धन करे जो इन्हीं के जो को जरूरियात हुए ये पूरी कर देने जो ग्रास लैंड सुधारे जो बीजा जंगली झाड़ वावे जा इन साथ मुझे मुख्य कम है गोबर के वावे जो ने बचाए जो कि हूँ 1965 थी ले हूँ 6 वर्ष जो तेनी थी मुझे पिताजी साथ रही मैं चालू कियो गुगर एक अड़ी वनस्पति है के आज कच्छ में सर्व सामान्य वही परंतु हाने कच्छ में गुगर जो जाल गोतनो वे तो भाग्य पाके जुड़े अड़ी परिस्थिति अच्छी हुई है। गुगर है ये आयुर्वेद जो प्राण है नीचे में अच्छे तो आयुर्वेद ये सनातन धर्म जो प्राण है अने आयुर्वेद जो प्राण ये गुगर है क्योंकि इन रीते आयुर्वेद के बचान हो तो गुगर के बचानो खूब जरूरी है। गुगर रो ये 40 जितली दवा हुई जो को होम्योपैथी जीवी एलोपैथी जीवी आयुर्वेद यूनानी वे इन्हीं में 40 खंड की दवाई में गुगर जितनी वपराजे तो इंडिया अवेजी में भी कोई वस्तु नहीं वपराजे। गुगर है कि इतरो महत्व जो घटक है इंडिया अवेजी में हना सुंदर कोई अड़ो घटक न सोधारणो के गुगर जी अवेजी में वापरी सका जे। एटले हाल दुनिया जी वस्ती बदली वही ती दवाइयां दी जरूर बदली वही दवाइयां जरूर बदली वही ती गुगर जो लोहन एटले जो नाश जो प्रमाण बदलो वे हाल एडी परिस्थिति आवी है के एवरेज 2025 डिसेंबर में नवंबर डिसेंबर में तास्कन में जगड़ी इंटरनेशनल लेवल जी वन्य प्राणी अने दुर्लभ वनस्पति के बचाए जी जगड़ी समिति जो कॉन्फ्रेंस हो एन में एरो ठराव करे में आयो कि पहला गूगल रेड डेटा बुक में हो एटले नाबूद थी जाती वो हाने तो ये कैटेगरी बो में अची पियो एटले नाबूद ज थिए तो इन्हीं जो सर्वेक्षण रो कि दुनिया में जानो 80% गूगल नाबूद थी हुई है परंतु मुके लगे तो इन्हीं सर्वेक्षण खोटो हों तो कहां तो पहला जो हों तो मुझी गणतरी में दुनिया मथा 97% गूगल नाश थी हुई है हाने मात्र 3% गूगल बची हुए 3% गूगल बची हुए इनके बचायला करी अने आ मरे मानव जात जो कोई हूँ मरे की प्रयत्न करना खबे आऊ अने मुझो कौमी फोरा चैरिटेबल ट्रस्ट इंग्लिश में गूगल के कौमी फोरा जो आज है मुझे ट्रस्ट ना प्रसरी कौमी फोरा चैरिटेबल ट्रस्ट है वे मुझे मंडली है श्री उमिया मजदूर काम का सरकारी मंडली डाबर कंपनी मैंने डाबर कंपनी जो एकलो जीवंती वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट असि मेरे भेगा थी ने हाल 2017 थी गोगर जो वावेतर कच्छ जिले में करियो था तो वर्षी एक लाख 2000 जितला झाड़ गोगर जा खेड़ू चंजे खेतर में ऊंचे ऐतिहासिक वावी दियो इन मारो महीने सुंदे इन जो मेंटेनेंस पनासी करियो था इन द साबे 2017 थी गोगर ऐसी वावी होता परंतु गवर्नमेंट दी पर सब्सिडी भी गोगर में 130 रुपया के चार्ज जा सब्सिडी भी परंतु ये 16-17 सुंदर दिन में अभी उन्हें ही बैठा नू जो को खेड़ूत गोगर वावे आवा सब्सिडी जबरों से उन्हीं सब्सिडी कोई भी कारण वगैरह अटकाई दिन में अभी गवर्नमेंट ही सब्सिडी अट गए परिणाम है कच्छ जा खेड़ूत वो 2.5 लाख गोगर आज रोटावेटर फिर भी नहीं जो नाश करी हुई था इसलिए गोगर के एक टैपिंग से इनकी नुकसानी बोरी थी इन जो नाश से जो प्रमाण वो है साथ ही बचाए जो प्रमाण वो ये खाली एक सब्सिडी जमा करें इतना गुगर तेनी नाश थी वाले इनपुट ये खेलू तो आवे जो बंद करी बता जवान रहा जब बच्चा खेलू तो गुगर वावी है था इनमें पनी परिस्थिति थी है कि हेवर नवीन

0: वस्तु थी नियो हेवरा की पेस्टी से जो थी कपनी बीमारी हो चुकी नियो मैंने भविष्य में आके करोड़ों रुपया नहीं जुड़ी सकना मैंने सिवाय कोई पन अंगन में ही गोगर भोगिंदा ताँ जो परिवार ऐड वायरस से बची सकनो अने देश की सेवा थी सकनी समाज की सेवा थी सकनी अने परिवार की सेवा थी सकनी अने सौथी वड्डी पर्यावरण की सेवा थींदी कि दुनिया में जन को नाबूद थींदो जार पंहिंजे सयारे प्रयत्न से पाछो अने सर्वत्र इनके नेरेला मिले अहिड़ा प्रयत्न थिया खपनि 2017 हुन गवर्नमेंट में सब्सिडी ॾींदी हुई पर उन थी सब्सिडी बंदि कई गवर्नमेंट के पाछी सब्सिडी चालू कई खपे हेव चालू कई गवर्नमेंट परंतु जो पंहिंजी कच्छी में चौक है ये दूध जो नाजेल वे तो छाए फूकी न पिए पहला जो गोबर पोखिया खेडूत अने पोए सब्सिडी बंदि थई न जोड़िया नी के पैसा एटले ई खेडूत हाणे गवर्नमेंट विश्वास करे में थोड़ो टाइम कंदा पर छता गवर्नमेंट के सब्सिडी चालू रखी खपे ऐं गवर्नमेंट डाड़म में बे वस्तु आने में सब्सिडी ॾे थी हुन जा त खेडूत खे छह महीने थी करे ॿ टे वरे में आवक चालू थिए थी हीअ त 15-20 वरे हूंदे आवक नथी थिए डेटा बुक कंदा पर हाणे त साओ नाबूद ॾियारे ते अची वियो कैटेगरी ॿ में अची वियो गोगर हीअ गोगर खे टपे जी मनाई थी वई वेटे जी मनाई थी वई अहिड़ी पोजिशन में गोगर अची वियो आहे हिनखे पाछो सॼा पंहिंजा जंगल ई हरिया भरिया गोगर से करी ॾिनो पंहिंजे मरिया जेतिरा अंगण ई मरिया जे अंगण में हिकिड़ो गोगर जो छोड़ वावी अने वावे से खाली पाकेज तंदुरुस्ती मिलंदी अहिड़ो न हिनजा जेको ॿिज थींदा हीअं त 12 मास ॿिज चालू वेंदा चैत्र अने भादुरे महीने में ॿ महीने में ॿिज थिए त जंगल में पक्षीअ खे खाधे रखी नथो वे पक्षी आहिनि गोगर जे ॿिज मथे जीवता वेंदा भई गोगर जा ॿिज खाई अने पक्षी जिते राति वास सुकाईंदा अने छरक ॾींदा हिन में ॼण जेको गोगर उगंदा एटले हिकिड़ी साइकिल चालू थी वेंदी हाणे अंगण में हिकिड़ो ज गोगर हूंदो त जंगल में निकिरे गोगर मुंहिंजा वरसी 8-9 गोगर ॿिया नया पिंड ई पोखंदा वेंदा जंहिंजो पुण्य पिणा खे मिलंदो इन सिवाय गोगर हिकिड़ो अहिड़ो झाड़ आहे दुनिया जो हिकिड़ो अहिड़ो झाड़ आहे की जंहिंखे जंगल में के खेतर जे सेॾे पाड़े ते वावियो त हिन में कंडा थिए अने अंगण में वावियो त हिन में कंडो कोई न थिए अहिड़े अजूबो झाड़ आहे भॻवान जी कृपा वारो झाड़ आहे हिन गोगर वावे जो मुंहिंजे पिता जी के असांजा परम पूज्य संत श्री ओदोराम जी महाराज थी विया ॾींहं के चया हुआ कंहिं गोगर खे बचाई जे गोगर ई मनी प्लांट आहे अने खरेखर हिन जा मरे शब्द सचा लॻनि था जेका तैनी ई जनी चई विया तैनी त कच्छ में गोगर एतिरे प्रमाण में हो की ही नाबूद थिए त कोई घणतरी न हुई एतिरो गोगर हो ही ॻाल्हि आहे 1955 जी हाणे इहे जो गोगर ओदोराम जी महाराज जे शब्द प्रमाणे ही गोगर बचाए जो मुंहिंजा बापू जी असीं 6 भाई आहियूं मूंखे परिवार सहित अफ्रीका वञे जो हो परंतु मुंहिंजे बापू जी मूंखे आज्ञा कया की भई तोखे हिते रही गोगर जी सेवा करे जी हिनखे बचाइजो आहे एटले आउं सम्झोसि ऐं नंढो हुउसि पहिरीं मुंहिंजे बापू जी रामायण वाचींदा हुआ रामायण में अहिड़ो हो की राम भॻवान हिनजी पिता जी आज्ञा मञिया एटले भॻवान बनी विया त आउं वीचार कयां मुंहिंजे पिताजी जी आज्ञा मञी हिन भॻवान न बनी सघां महान माण्हू न बनी सघां श्रेष्ठ माण्हू न बनी सघां मात्र माण्हू बनी सघां उहा काफ़ी आहे अने आउं ख़ाली माण्हू बनियल करी न फॉरेन छॾी अने हिते रही वियोसि अने पुठियां आऊं मुंहिंजी आयुष्य मणे भरे गोगर पासवड़ लॻायई एटले अॼु वांडा जे सीमाड़े में 2.5-3 लख गोगर वावई विया आहिनि अञा अञा वरसी 50,000 लख गोगर वावे जो वांडा जे सीमाड़े मुंहिंजो टार्गेट आहे ही चालू आहे अने मां मणे सयारो प्रयत्न करी मणे खेडूत पंहिंजे खेतर जे सेॾे पाड़े तंहिंखे विच में गोगर वावी अने व्यक्ति मणे पंहिंजे अंगण में गोगर वावी किथे कई ट्रांसमिशन लाइनूं वेंदियूं आहिनि गोगर जो नाश थींदो हुए त हिनखे अटकायल करे हिन सरकार खे सारी अहिड़ी रजूआत करी अने हिन जो नाश न थिए हिन गोगर बची रहे अहिड़ा प्रयत्न करी अहिड़ी मरे वठे अपेक्षा जय हिंद
1: उपयोगी वनस्पति गोगर के बचायू श्री मोगसी सोडा से बटा पर्यावरण लक्षी खासवेड़ो वार्तालाप सो पांजा कवि रामजी जोशी राम चेता कसीम सेड़ा बचदात बचदो पांजो जीवन हुन वगड़े हल्दी कुआड़ी त राम ओडवाए मयण श्री सोडा साहब गुगड़ जो मेहमा चेन हिन जो संवंदन करे जी गाल पंकिया तदे प्रकृति जी ठाए कोपा चीज कम वगर जी नाए कच्छ जी धरा भले अदरण चोवा जे पण हित जी किसम किसम जा झाड़वण जीवन में भारी कमसार आए ओछो मीह बोरो तप तय अड़ीखम टिकी रोंदड़ झाड़वण जे गुणे जा लेखा कयूं त पार न अचे मावर

0: कहानी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग
1: उमंग। सभी श्रोता मित्रों को विंगेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन भाई और मोतीन भाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
1: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और देवी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विनेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विनेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चले एक और महादेश अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
1: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियाँ बिछाई जाती
1: जी।
0: फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: इथियोपियन कॉफी

0: शादी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800-4405559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

0: केरल प्रदेश में थेकड़ी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें, पर इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यू तो टाइगर रिजर्व है, यहाँ बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहाँ घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ।
2: हाँ हाँ हाँ सुनीता,
1: ये लो, ये पकड़ो पकड़ो। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी,
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।
0: कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी,
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो,

ये जगह ऊष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
0: ओ,
1: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा,
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी, और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।

0: एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूँगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
1: अब यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
1: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
0: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
0: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली है।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं। अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
0: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
0: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
0: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
0: ये केरल में क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में तिरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है। और इडुक्की के बाद इसमें नेरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, मुरली, मुथवन, पादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, तिलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

अड्यार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहाँ आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: बलियत्तर और करडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
2: ये काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, पर अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: आप सुनी रहे हते प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक NCERT, प्रसारण आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर थी करवामां आव्यो।
5: આકાશવાણી ભુજ પ્રસ્તુત છે અત્યારના મુખ્ય સમાચાર। 4399 દિવસનું દીર્ઘકાલીન શાસન કરનાર દેશના પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી બનતા નરેન્દ્ર મોદી, વિશ્વના અનેક દેશોના વડાઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા। શ્રી મોદી દેશના સૌથી લાંબા સમય માટેના પ્રધાનમંત્રી બનતા દિલ્હીમાં એનડીએની બેઠક, જ્યારે વતન વડનગરમાં સફળ શાસનની ઉજવણી। વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર આજથી 2 દિવસની સત્તાવાર મુલાકાતે બલ્ગેરિયા અને ફિનલેન્ડ જશે। રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર પંચે નવી દિલ્હીમાં ડિજિટલ

हिंदी फिल्म गीतों नो कार्यक्रम मनोरंजन आप आकाशवाणी ना भूज केन्द्र पर सांभी रहा छो जेमा हमणा ज आपे बॉम्बे फिल्म नु गीत चित्राना स्वरमा सांभळ्यु कार्यक्रम मा हवे सांभळीए केके ना स्वरमा रहना है तेरे दिल में फिल्म नु आ गीत

मुझा कच्छी भा भेण ही आए कच्छी कार्यक्रम भाभीड़े जा बोल अने आऊं या आजी रेडियो दोस्त पल्लवी माणिक ता आ मणी जो आऊं हुंब से आवकार करिया थी पांजे हन कच्छी कार्यक्रम में अने अज पान गाल करदासी हकड़ी कच्छी चौवक दाव कागड़ो बी पगे बंधा जे अर्थात दाव कागड़ो बी भरानू रे तो ही कच्छी चौवक है ई हकड़ी कच्छी चौपड़ी अरविंद राजकोट जी चौपड़ी है कच्छी चौवक इन मजा थी गिने लिया है तो पान गाल करियो ते पहला सुनी गिनो हकड़ी कच्छी काफी।

नाजर जी काफी सोयासी पा गुलाम रसूल अबामिया जे सोर में आने हने पा पांजी गाल अगिया वदायों त कच्छी चौबकाए डाउ कागड़ो बी बाजू थी रे त क्या रकड़ो डाउ कागड़ो वो से जंगल में रंदो वो त हिता कागड़ा मेरे कारा जुए तो ही जरा वधु कारो वो आने भगवान जी अड़ी माया है क कारे के अच्छो थे जो मन थिएज तो हकिया ही कागड़ो जंगल में हिकड़ी एड़ी जगह ते उड़ दो वो जड़ा मोरले जा पीछा छनल प्या हुआ ई दिसी ने कागड़े के थे जरी मोरला लाट पीछा मुझी पछ में खुशी छड़िया ने मोरले जी चाल तम के अचेज कोई कागड़े जी नात में केर रहे आम तहाने पखिये जे राजा मोर जी नात में भेरी वेंदो से ने इनी भेरोज रोंदो से एड़ो विचारी कागड़ो हिकड़े पुठिया हिकड़ा मोर जा पीछा कुछ में खोसेला मंडाणू कुछ में कम पता है कोई मोर जे मथे ते कलगी हुए थी एड़ी पीछे जी निधी कलगी पण मथे ते लगाए पिंड मोर बनी भी हुआ एड़ी खातरी से कागड़ो मोर जे घरे में पोगो मोर जो गेरो चुण खेदो वो इनी बेरो ई पण चुणेला लगो तदे हिकड़ो मोर इनके पूछे बात तू के रही है तद कागड़ो वट से चे हूं के नेता सुनो आऊ ता जो भाई या मोर जा पीछा लगाए से कोरो मोर थिया जे मोर ने गे पखिया जी नात में हिन नकली मोर जी गाल पसरी गई मणि के थियो ये कारो कागड़ो ता पांजी नात के लजाए मारे पोई ता मेरे मोर हिन कागड़ो

ॾींहं ते वरी पिया कागड़े जा खोसला पीछा ने कागड़े जा पीछा प कढे वदा इनके बांडो बनाए छड़िया ने चुंजू विझी ने वजाए ॾिनो हिन रीते मोर जी नात म्या कढी विझल ही बांडो कागड़ो पाछो पेंड जी नात में वियो प इन जी मेरे गाल सुनी इन जी नात प इनके नात बारा कें ने ही हिकड़ो कागड़ो डी बरानु रियो हिन गालता ताके ही समझे ला मिले तो जो भगवान जड़ो बनाया है तेड़ो रों देड़ डापड़ करी पा अच्छा थेला वेनो तो बी भरानु रो कागड़े जी कथा एड़े के जरूर लागू पैती अने हाने आ फिरी सुनी गिनो हकड़ी लाट मजा जी काफी।

0: मजा जी काफी सोया सी पा गुलाम रसूल अबामिया जिज स्वर में त खरेखर काफियूं हाने सोने लाए बहु ऊंची मिले थियूं त झोना जो को कवि आई पाजा जो को साहित्यकार ई हेड़ो मुड़ो वारसो साचवे रखे आया अटले पा अज जी पेढ़ी इन जो लाभ गिनी सको था त आमणी नवे श्रोता है के अज जे जुआने के कैड़ी वस्तु गमे थी से पण आई असा के लिखी हलाई जा त असी आवटे परसी सको असा जी आकाशवाणी जो एड्रेस आवा के लिखाया थी असा जी आकाशवाणी जो एड्रेस आए बाबीणे जा बोल केंद्र नियामक श्री आकाशवाणी भूज पिन कोड नंबर 370001 त आई जरूर थी असा के लिखी ने हलाई जा अने असा जो प्रोग्राम केड़ो लगे तो से पण चौजा अने असा जी आकाशवाणी जी सोशल मीडिया ते चैनल पण आई है आकाशवाणी जो इंस्टाग्राम अकाउंट पण आए अने असा जी आकाशवाणी जो फेसबुक अकाउंट पण आए त असा जी हन प्रोग्राम में आके केड़ो लगे तो अने असा जी प्रोग्राम में कोरो कोरो सुने ले मंगोता से पण असा जी हन प्रोग्राम जी इंस्टा अने फेसबुक आईडी ते कमेंट में जरूर थी चौजा अने हने आऊ आजी रेडियो दोस्त पलवी आवटा थी रजा गंदी से पा फेरी मिलबो कच्छी चौबकुम ओठा चौठा अने कच्छी काफी गीत भजन इमड़े खणी ने अचिंदासी अने फेरी थी मिलदासी त त्या सुधी मुके रजा दीजा अने सोंडल मणि भाभेणे के आजी रेडियो दोस्त पलवी जा जजा करे ने राम राम राम राम राम राम
1: वो कच्छी साप्ताहिक कार्यक्रम बाबीणे जा बोल कार्यक्रम प्रस्तुति पल्लवी माणिक प्रसारण आकाशवाणी जे भूज केंद्र का करे में आयो
2: आकाशवाणी भूज समाचार विभाग रजू करे छे विशेष श्रेणी केंद्र मा एनडीए सरकार ना 12 वर्ष जेना त्रीजा अंक मां आजे प्रस्तुत छे जीवन निर्वाह नी सरलता कर सुधारा अने डिजिटल इंडिया ना फायदा ए विषय पर विशेष चर्चा जेमा भाग ले रहा छे तोलाणी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आदिपुर ना अर्थशास्त्र विभाग ना असिस्टंट प्रोफेसर डॉक्टर दिशा गोस्वामी कार्यक्रम नु संचालन करी रहा छे अशरफ नथवाणी।

लता मंगेशकरे गायेलो किनारा फिल्मनु गीत आपे सांभळ्यु। कार्यक्रममा हवे सांभळशो आशा भोसले ने फिल्म हम किसी से कम नहीं।

0: देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने देश सौथी लांबा समय सुधी सतत चूंटाये प्रधानमंत्री तरीके सेवा आप बदल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनंदन आप। एक सोशल मीडिया संदेश में राष्ट्रपति कहूं कि आ सीमाचिन्हरूप प्रसंग देश द्वारा तमाम नेतृत्व में मुकेला स्थायी विश्वास और विश्वास पुरावो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने सोशल मीडिया संदेश में कहूं कि आ ऐतिहासिक सीमाचिन्ह मय मापन नहीं परंतु अपनी राष्ट्रीय विकास यात्रा में परिवर्तन युग नो प्रतिबिंब। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, निर्मला सीतारमण सहित केन्द्रीय मंत्रीओए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश सौथी लांबा समय सुधी चूंटायेला प्रधानमंत्री बनवा बदल अभिनंदन पाठव्या। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह जणाव्युं कि 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए भारत गौरव पुनः स्थापित कर्यु, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरूआत करी और देश ने गुलामी की मानसिकतामांथी मुक्त कर्यु। माहिती और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवे पत्रकारों साथ बात करता कहूं कि प्रधानमंत्री मोदीए खूब कुशलता संयम और दृढ़ निश्चय साथ राष्ट्र मार्गदर्शन और संचालन कर्यु।
2: प्रधानमंत्री जी, भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते हैं और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, एक भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े हैं, ऐसी प्रार्थना।
1: केन्द्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह सहित नेताओं प्रधानमंत्री ने अभिनंदन पाठव्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश सौथी लांबा समय सुधी प्रधानमंत्री बनता आज मिलेली कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री सन्मान में प्रस्ताव पसार कर तमाम केन्द्रीय मंत्रीए आज मिलेली बैठक में प्रधानमंत्री ने अभिनंदन पाठव्या। बीजी तरफ राष्ट्रीय लोकशाही जोड़ा एक बैठक आज नवी दिल्ली में योजा। एनडीए सरकार 12 वर्ष और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत में सौथी लांबा समय सुधी सतत सेवा आपता चूंटायेला प्रधानमंत्री बनवा अंगे उजवणी आज नवी दिल्ली में भारत मंडपम खाते कर।

0: पूरी तरह से गुस्से के वातावरण में। हम मानते हैं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा के वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप से गुस्से और उम्मीद आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: पत्रकारों साथ बात करते रेखा गुप्ता कहूं कि प्रधानमंत्री मोदीए पोतानु आखू जीवन राष्ट्रनी सेवामां समर्पित कर्यू छे। भारतमां अमेरिकाना राजदूत सर्जियो घोरे आजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने देशना सौथी लांबा समय सुधी चूंटायेला प्रधानमंत्री बनवा बदल अभिनंदन पाठव्या हता। सोशियल मीडिया पोस्टमां श्री घोरे कहूं कि आ सिद्धि श्री मोदीने दायकाओनी समर्पित जाहेर सेवा अने नेतृत्वनो एक सशक्त पुरावो छे।
2: फॉलो करशो।

जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में देश परदेश फिल्म का गीत। गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।

0: गजब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हकीकत फिल्म का गीत,
1: गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

आप सुनते हैं कैफी अजमी का लिखा, खय्याम का संगीतबद्ध किया आखिरी खर्च फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

फिल्म का नाम है दस्तक, आवाज लता मंगेशकर की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत मदन मोहन का।

आइए सुनते हैं अनिल बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया आए दिन बाहर के फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: बस आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भोज केंद्र से आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मीली से, बोल योगेश के, संगीत एस के बर्मन का, आवाज किशोर कुमार की।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में दुरिया फिल्म का गीत, गीतकार सुदर्शन फकीर, संगीतकार जयदेव।

बुनियादी दोस्तों के लिए कार्यक्रम आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि का प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रूपए से अधिक के विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान में जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के अमेरिकी ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में रही है। जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर में देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने दिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी तो संकल्प में जुड़े ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।

0: प्रधानमंत्री ने कल भुगतान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और सेवा में समर्पित किया है।
1: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ओरा कुमार विसनायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मायापे और तमिलनाडु और टोबैगो के प्रधानमंत्री कन्ना प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर समुच्छेद तिहत्तर हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, मुसलमान पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया गया। के साथ अमर यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त परिणाम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
3: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रूपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन द्वारा वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम

0: से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को न आए और विकास का जो माहौल है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। यह विषय प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शन में बदलने का प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रही है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय

0: की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर में बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े और कुवैत में अली अल सलीम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध दौरान अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुमार खोस और पट्टिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबरुल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर फौजी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि का प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों से 4,700 करोड़ रूपए से अधिक के विकास परियोजना

पहले मंत्रिपद उपलब्ध है और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली और चार क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: sana soracağım bir soru. Ne? Bir soru. Kumar.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए

0: सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकीय समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता बुलेट ट्रेन अनिवंद्य भारत की गतिशीलता की रखा का एक नवा भविष्य में ये गगनयान का भारत में आत्मविश्वास है। 12 वर्षीय यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय गरीब कल्याण सेवा सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान आयुष्मान कवच की मजबूत करना जन जन में आत्मविश्वास ने हमें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहा है। ग्रीन एनर्जी भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस विकास में महायज्ञ ने वधु वेगवंत बना दिए विकसित भारत माके विकसित गुजरात बना दिए 12 वर्ष विश्वास न विकास न जन कल्याण न
1: आशा भोसले और सचिन सिंह फिल्मों नाम सत्य पे सत्ता।

यात्रा छह छिल्ला 12 वर्ष के विकास में समर्पित यशस्वी वहा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने नेतृत्व ने 12 वर्ष विश्वास न विकास न जन कल्याण असफल छह में नर्मदा की जल समृद्ध थकी धराई स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चलती आधुनिक पानी बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत की गतिशीलता की लखाता एक नवा भविष्य ने अने गगनयान का भारत में आत्मविश्वास ने 12 वर्ष की यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय अने गरीब कल्याण सेवा अने सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान अने आयुष्मान कलश थी मजबूत थता जन जन में आत्मविश्वास ने અને હવે તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પ્રયાસોથી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત બની રહ્યું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ 12 વર્ષ વિશ્વાસના વિકાસના જનકલ્યાણના

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं माला खूबचंदाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल मुख्य ख़बरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जी सभ खां लंबे वक़्त ताईं शेवा कंदड़ चूंडियल प्रधानमंत्री बणियो। मंत्रिमंडल इन हासिलात ते ठहराउ बहाल कयो। मर्कज़ी मंत्रिमंडल अहमदाबाद मेट्रो जे विस्तार ऐं अमरावतीअ में सरकारी दफ़्तर ऐं रिहायशी अङणनि समेत 4,700 करोड़ रुपयनि खां वधीक जी विकास योजनाउनि खे मंज़ूरी ॾिनी। प्रधानमंत्री जी हासिलातुनि ऐं सरकार जा 12 साल मुकमल थियण जो जशन मल्हाइण वास्ते नई दहलीअ में एनडीए जी बैठक हिन वक़्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाणे नई दहलीअ में नीति आयोग जी 11 गवर्निंग काउंसिल जी बैठक जी सिद्धार्थ कंदो ऐं मौसम विभाग ईंदड़ 3 ॾींहनि में दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त गर्मीअ खां राहत मिलण जो इम्कान ज़ाहिर कयो। हाणे ख़बरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अॼु भारत जो सभ खां लंबे अरसे ताईं शेवा कंदड़ चूंडियल प्रधानमंत्री बणियो आहे। श्री मोदीअ 26 मई 2014 ते प्रधानमंत्री उहिदे पद जी कसम खई हुई। प्रधानमंत्री मोदीअ जो मुसलसल कार्य अरसो हाणे 4,399 ॾींहनि जो थियो आहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, घरू मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर समेत केतरनि ई मर्कज़ी मंत्रियुनि श्री मोदीअ खे देश जे सभ खां लंबे अरसे ताईं लगातार चूंडियल प्रधानमंत्री बणियल रहण ते मणे मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। केतरनि ई विश्व नेताउनि पिण भारत जे सभ खां लंबे वक़्त ताईं चूंडियल प्रधानमंत्री बणियल रहण ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ खे मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। मर्कज़ी मंत्रिमंडल अॼु हिकु ठहराउ बहाल करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ खे लगातार ॿिन कार्य अरसनि ताईं चूंडियल प्रधानमंत्री बणियल रहण ते मणे मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। चूंडियल प्रधानमंत्री जे रूप में 4,399 ॾींहनि जी लगातार ख़िज़मत सां गॾु श्री मोदीअ अॻूणे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूअ जे 4,398 ॾींहनि जे लगातार कार्यकाल जे गुज़िरियल रिकॉर्ड खे टोड़े छडि॒यो आहे। मंत्रिमंडल जी बैठक खां पोइ नई दिल्लीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूचना ऐं नशरियात मंत्री अश्विनी वैष्णव चयो त इहो प्रस्ताव श्री मोदीअ जी राष्ट्र ॾांहुं लगातार शेवा में इन ऐतिहासिक हासिलात खे ॾेखारे थो ऐं केतरनि ई कौलबद्धताउनि ऐं हासिलातुनि खे उजागर करे थो। हुन चयो त मंत्रिमंडल इन ऐतिहासिक हासिलात ते प्रधानमंत्रीअ खे मुबारकूं ॾियण लाइ 7 नुक्ताई ठहराउ बहाल कयो आहे। इन विच में मंत्रिमंडल अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जे तबके 2A खे मंज़ूरी ॾिनी आहे, जंहिं में कोटेश्वर रोड खां हवाई अॾे ताईं जो कॉरिडोर शामिल आहे। इन योजना में 6 किलोमीटर खां पिण वधीक लंबो मेट्रो कॉरिडोर ऐं 5 स्टेशन शामिल आहिनि।
1: कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। 1 फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: आर्थिक मामलनि जे मंत्रिमंडल कमेटीअ आंध्र प्रदेश जे अमरावतीअ में मर्कज़ी सरकार जी ॿिन मुख्य ढांचे वारियुनि योजनाउनि खे पिण मंज़ूरी ॾिनी आहे।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: एनडीए जी बैठक अॼु नई दिल्लीअ में हिन वक़्तु हली रही आहे। इहा बैठक एनडीए सरकार जा 12 साल पूरा थियण ऐं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ जे भारत जे सभ खां लंबे अरसे ताईं लगातार चूंडियल प्रधानमंत्रीअ तौर बणियल रहण जे सिलसिले में मुंतज़िम कई वई आहे। जुड़ाव जे सभिनी साथियुनि धुरियुनि जे नेताउनि सां गॾोगॾु प्रधानमंत्री मोदीअ समेत भाजपा जा आला अॻवान पिण हिन बैठक में बहिरो वठी रहिया आहिनि। एनडीए जे बैठक में 22 राज्यन ए मर्कजी जेसा रियासतुन जा मुख्यमंत्री ए उप मुख्यमंत्री तोड़े जुड़ाव जे सबनी साथी धुरिन जा नेता पिण हाजिर आहिन। बैठक में मुख्तलिफ राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमन, बुनियादी ढांचे वारन कार्यक्रमन ए 2047 ताई मुल्क के तरक्की याफ्त मुल्क में तब्दील करण वारे मोदी सरकार जे विजन जी नजरसानी ते ध्यान मरकोज कयो पियो वञे।
2: आकाशवाणी का बुधी रहा आयो ये खबरों तुम्हें असानी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात पे पण बुधी सको था। वधीक खबरों की तफसीलों के लिए तुम असानी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो कर सको था।
0: फेसबुक जी मूल कंपनी मेटा अज पधराई कई आहे त हुआ भारत में पेंजो पहरियो एआई सघवारो डेटा सेंटर भरपा कंदी। समझौते तहत मेटा ए रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट सघ वारो डेटा सेंटर कायम कंदा। यो सेंटर भारत डां मेटा जी कोलबत्ता के दिखारे तो ए दुनिया के सब का मुतहरिक डिजिटल बाजारों में एक में उत्पादन ए एआई सघुन के आलमी सतह जो बुनियादी ढांचो फराहम कंदो। बचाव वजरात अज भारतीय बहरी फौज के लिए जदीद सघ जा 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स जी खरीदी लाए 449 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट ते सही सिक्का कया आहिन, जैमें घट में घट 75% स्वदेशी सामग्री शामिल आहे। वजरात मुताबिक इो सिस्टम उपग्रह सिग्नल हासिल करण ए ट्रैकिंग में खलल विझण ए सिग्नल स्पूफिंग तोड़े गुमराह कंदड़ जैमिंग जरिए

0: दुश्मन के जीएनएसएस रिसीवर की कारकर्दगी के घटाने में सघियारो आए। मर्कजी पेट्रोलियम ए कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अज है त देश में सीएनजी की का भी कमी कोने। उन सरकार घर तई पाइप वाले कुदरती गैस पीएनजी की रसद कर रही है। श्री पुरी एलपीजी कनेक्शन के पीएनजी कनेक्शन में तब्दील करण की कोशिशों कई पी वन। उन जानायो त
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस लोगों के घरों में जा रहे हैं। एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सकाफती मर्कज में नीति आयोग की यारहीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की सिद्धार्थ कंद। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के नजरिए मुताबिक इन साल जो विषय है 2047 तीन विकसित भारत के लिए समाइंदड़ इंसानी विकास। यो विषय हर भारतीय की चंग भलाई ए विकास से मरकोज है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ए आसपास वारे इराजिन में इंदर तीन दिन में गजगोर सा गद बरसात पवण तोड़े मिट्टी वारा तूफान लगण जा इम्कान आहिन। महकमे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक जे साहली इराजिन ए ओला बंगाल में हिमालय जे हेठाइया वारन इलाकन में कुछ जायन ते तेज बरसात पवण जो तखमीनो जाहिर कयो आहे। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ए तन्वी शर्मा प्री क्वार्टर फाइनल में पेंजी जाय पुख्ती कई आहे। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु जो सामनो ईशा रानी बरुआ सा ए तन्वी जो मुकाबलो मालविका बंसोड़ सा थींदो। अफगानिस्तान सा गड टिन मैचन जी एक दिन वारी सीरीज का अग हार्दिक पांड्या जख्मी थियण सबब बाहर थियो आहे। विराट कोहली अग में टीम का बाहर आहे। यह सीरीज दक्षिण अफ्रीका में साल 2027 में थींदड़ वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी की शुरुआत आहे। आखिर में मुख्य खबरों एक बार बीहर बुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सब का लंबे वक्त तई शेवा कंदड़ चूंडियल प्रधानमंत्री बणो आहे। मंत्रिमंडल इन हासिलात ते ठहराव बहाल कयो। मर्कजी मंत्रिमंडल अहमदाबाद मेट्रो जी विस्तार ए अमरावती में सरकारी दफ्तर ए रिहायशी अंगणन समेत 4700 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री के हासिलात में सरकार का 12 साल मुकम्मल थियण के जश्न मनाने वास्ते नई दिल्ली में एनडीए की बैठक इन वक्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाने नई दिल्ली में नीति आयोग की यारहीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की सिद्धार्थ कंदो। मौसम विभाग इंदर तीन दिन में दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी की राहत मिलने का इम्कान जाहिर करे।
2: नमस्ते।

3399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीके राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी के राष्ट्र के प्रति निरंतर

मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता

0: सूचना विभाग ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए 19 क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन के उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉ सिंह को बताया कि वो अपने सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सतत 4,399 दिवस पूरा करीने बन्या देशना सौथी लांबा समय सुधी चूंटायेला प्रधानमंत्री। मोदी सरकारना नेतृत्वमां केन्द्र सरकारना 12 वर्ष पूर्ण थवाना अवसरे अंजारना गांधी चौक अने बस स्टेशन विस्तारमां राज्यमंत्री त्रिकमभाई चांदानी उपस्थितिमां योजायो स्वच्छता कार्यक्रम। कच्छ जिल्लामां स्वच्छता सप्ताह अंतर्गत जनभागीदारी साथे मोटा आसंबिया बेराजा अने दयापर सहितना गामोमां नदी तळावोमांथी प्लास्टिक अने कचरो दूर करायो। कारजार गरमीमां पशुओ माटे मांडवी चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 100 दिवसीय लीलाचारा निरण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक आगळ वध्यो। अत्यार सुधीमां 5,00,000 किलोथी वधु चारो पहोंचाडायो। भूज तालुकाना गामोमां 7 दिवसीय रक्तपित्त केस शोध झुंबेशनो प्रारंभ। आरोग्य विभागनी टीमो घरे घरे जईने लक्षणोनी तपास साथे मफत सारवार जागृति फैलावशे। गांधीधाम महानगरपालिका द्वारा प्रोपर्टी टेक्स पर 10% वर्तरनी योजना हेठळ 8.71 करोड़थी वधुनी वसूलात। 30 जून सुधी मिलकत धारको लाभ लई शकशे। लखपतना छेवाड़ाना गामो तेमज बन्नी हाजीपीर अने लुडभाई विस्तारमां पीवाना पाणीनी अछत सर्जाता तात्कालिक टेन्कर शरू करवानी स्थानिको द्वारा मांग कराई। कच्छ जिल्लाना A1 ग्रेड मेळवनार 867 तेजस्वी विद्यार्थीओ अने 100% परिणाम लावनारी शाळाओ माटे आवतीकाले केरा खाते सन्मान समारोह योजाशे। गुजरात पोलीसे ऑपरेशन मिलाफ हेठळ 1 महिनामां 1,477 गुम थयेला व्यक्તિઓને શોધી કાઢ્યા। જિલ્લા કલેક્ટરની સૂચના બાદ કચ્છ જિલ્લામાં વહીવટીતંત્રની જુદી જુદી ટીમો ફાયર સેફટી અધિકારીઓને સાથે રાખીને હોટલોમાં આકસ્મિક તપાસ શરૂ કરી। મુખ્ય સમાચાર પૂરા થયા।

0: दोस्तों आज के हमारे मूल कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं अशोक व्यास के लिखे चलती एक कुआना, निर्देशक है अरविंद माथुर।
1: तुम्हारे लिए चाय बना दे जाए और तुम अपने बैठे हो मुंह लग कर गंभीर चुप्पी। अच्छा है बस, और शादी के बाद की जिंदगी का अभ्यास है बंद करो बकवास, बात करो एक दुखी का उपवास। अरे दोस्त, इस तरह की जिंदगी से अब क्या होना है? नहीं हो रही शादी, तुम बस इसी बात का रोना है। अब रोना है तुझसे भाईजान, भाईजान लड़कों की शादी लड़कियों से होती है। अरे यही तो है संकट।
2: संकट?
1: अरे संकट कैसा? अरे जिस मैदनी पर दिल आए, जिस हसीना को दिल चाहे वही हरी का नाम ले उसका काम है।
2: अरे ये जानता है तू अच्छी तरह, लड़कियों के सामने मैं नहीं डरता। कभी तुम पहुँचाता हो हर तरह के पहाड़ में, कहीं तुम हो जाता हूँ।
1: अरे ये तो खोना लगा
2: खो देना सब तो लेना।
1: अरे ये अपना पत्र कैसा
2: ऊपर वाले के इस तोहफे को स्वीकार कर बाप

0: से तुम नहीं जानते वो कितने आदमी का कैसा रहता है। अरे गोवंते भी तेज तर्रार है, सब उसको प्रेमी कहते हैं। इस मौत शौक कहने के सामने मैं जैसे तैसे अपने शरीर को भूलूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे संभालूंगा। सख्त होते होते तो उसके सामने कैसे बोलूंगा। उसको गुंडा बोलने से बचाना होगा, उसके लिए मुझे कोई चक्कर चलाना होगा। चक्कर क्या कोई चक्कर चल सकता है? क्या समस्या काफी हम निकल सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं हो रहा विश्वास। क्या मुझे करना पड़ेगा उपवास? वहीं पर हमें करने होंगे रिहर्सल, यानी कि पूर्वाभ्यास।
1: सुन,
0: कुछ देर में यहाँ आने वाली है मेरी सहेली, तेरी सहेली यानी सोनिया। सोनिया और रिहर्सल नहीं समझ पाया कुछ, रोने लगी और तेरे चैन सी हलचल। हाँ समझ पालक, बीत गया समय तेरे डरने का। हमारा ध्येय है कन्याओं के सामने तेरी झिझक दूर करने का।
2: वो कैसे महाराज?
0: वो ऐसे समझ ले कि ये कमरा ही है तेरी ससुराल।
2: ये कमरा मेरी ससुराल? वही पूछो तो जाने वाले भाई। मैं आईक्यू वाले सज्जन सीधे शब्दों में कहता हूँ समझाकर।
0: इंटरव्यू होगा पहले तेरा यहाँ सोनिया को गुणवंती बनाकर। लगता है अरे सोनिया। हेलो सोनिया।
3: हेलो संजय।
0: सोनिया अभी बात हो रही थी तुम्हारे, वो देखो मुंह फेरे खड़े है मजबूर ब्रह्मचारी। आओ इधर जाना बन। सोनिया ये है रमन।
3: रमन सुना है आप लड़कियों से बहुत कतराते
0: हैं। उनकी समस्या यही है कि ये घबराते हैं।
3: तेजी समस्या खुरा सा
0: एक कुरा शादी का पैसा एक इंटरव्यू करते की हुई है आशा, लेकिन लड़कियों के सामने बन जाता है उनका तमाशा। तो अब देवी हम इसकी तकलीफ दूर करेंगे। तुम बनो गुणवंती और हम सेठ दौलत राम का रूप धरेंगे।
3: हेलो
0: भाई बेचारे रमन जी, कुछ पल के लिए तकलीफ ले जाइए। हम वापिस इस कमरे को अपना ससुराल मान
3: पाएंगे। लेकिन ससुर
0: बाहर जाकर कंगे से सहिए। ससुराल पहली बार आ रहे हो, अंदर आते समय उतना डरिए।
3: तो मैं चला
0: भगवान कहेंगे तुम्हारा। सोनिया
3: कौन से बंदा जी कैसे
0: सोनिया? सुनो मैं जा रहा हूँ अंदर तुम्हारी मम्मी के पास, शादी का इंटरव्यू देने आएंगे। कोई रोमांस जैसे कहो सवाल करना, बात कुछ जगह तो मुझे खबर देना।

0: मैं वहां पर बह रहा हूँ, धड़क तेरे दिल को संभाले। मैं उनको कहूंगा अगर वो नजर उठाने
1: जी। आराम कुर्सी पर बैठे, मैं देखती रहूंगी यही पेश किताब को। देखिए क्या हाल होता है नेग्लेक्टेड खड़े खड़े जवाब का।
0: जी सुनिए, जी सुनिए,
1: जी सुनिए,
0: जी जी मैं वो शादी की बातचीत के लिए बुलाया गया हूँ।
1: मुझसे शादी करना
0: चाहिए,
1: शादी की करना चाहिए
0: जी। वो सबलोग करता है इसलिए
1: यदि सब लोग शादी नहीं करें तो क्या आप ही नहीं करेंगे?
0: जी नहीं, मेरा मतलब

0: जवाब देने को तैयार हो जाइए। तैयार जी तैयार। तो ये नारी और पुरुष में आप किस को उच्च स्थान देते हैं, फिर बताइए।
1: मुझे

कहते हैं आपके जीवन में शास्त्रीयता बारी की आयागो की संग्रह शुरू का समय देता दिन बदले कारण है संगीत के मधुर पाठशाला सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: के टुकड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस से उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: तो सुनो वो भूले कार्यक्रम उजाला उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: के संगीतकार थे राम संपत। सुबह जैसे चाय में घर जाए चाहिए आपके जीवन में होते है संगीत होने दूसरे गीत की आवाज़ें घनों की अनूठी प्रवास सुनहरे गानों का अंदाज आपके सुबह को बनाए खास होने दूसरे गीत सुबह 7 बजे विविध भारती पर।
1: तुम कल 3 बजे
0: कमाल है, इतने भी नहीं समझते।

खराब समय है बोली भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत। आवाज़ अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब दिव्य भारती बन जाती है एकाकीपन के साथ ही।
1: ओ पूरा सा

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

0: रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और पीवी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2021 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर को जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने

0: कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुट चक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, तीन तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर सही नेता है। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री

0: कोरिया के राष्ट्रपति ली जी मिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनिल कुमार डिसनाय का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबागो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज 5 युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को

प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राय

0: रेडियो।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्हें छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सत्यनारायण अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन के उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण के ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट की कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत ने वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारत ने 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू के एनएस क्रिस्टिलो को और

0: पंचायत को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजना को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Lisa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance nods Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है, जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He says it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: Our

0: भारत का सपना किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: Earlier, the National Democratic Alliance NDA backed adopted a resolution awarding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest-serving elected Prime Minister Narendra Modi.

0: से नमस्कार यूनुस खान की ओर से। आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शब्द सौरभ तो आप जानते हैं, एम वैंसी है, भद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी। नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में पहुँचा हूँ।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुन

0: पाई जाएंगी।
1: ये मैं खाना है, जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और इन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
2: मोहब्बत जमीन पर रहती है, मोहब्बत नहीं सकती, अजीब इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जमीन पर रहती है, मोहब्बत नहीं सकती।
0: सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस जवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बम्बई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा ये फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा दूं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में बड़ा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो नहीं बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम दार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डी एन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफेयर, भाई मैं तो बुखरा जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद जब मेरे कॉलेज की छुट्टी में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहाँ पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थी। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डबल्स मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम अज कम उमा शशि। अरे जमाने कहानी किसी सीन के रहस्य चल रहे थे। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ बैठो बताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुदार। वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन 64 में पांडव को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के घरेलों में, सुनाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चार होगा। रंग जमता हुआ देख कर मैंने नाटक को जारी रखते हुए आवाज को पुरगत बनाकर आवाज साहब के नेक परवीन में से एक शेर कर डाला। वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, वो बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरन को दिखाई दे रही थी जनाब उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे कि वो रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर बाबा बाबा बाबा की आवाज बुलंद होगी। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार।

0: तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म की फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर, ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: उसी तरह
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन में सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिरास और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी ने याकूब भाई की कंजूस मक्खी चूस बात को बुढ़ो रोल, मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता वाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जो जतीर और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारोबार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांत के मुकाबले में कर चुका। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने की कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बाधा कहा मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खताब अता फरमा चुकी है। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
3: मेरी बेटी कहा है मेरी बेटी?
4: अच्छा नहीं चिंता खराब कर दिया, शायद कह रहे हो
3: मेरी बेटी कहा
4: है? भाई
3: हम चले गए उस राज्य से तुम उठाते ले गए थे।
4: हाँ मैं कहो शायद मैं याद करूँ,
3: प्लीज याद करो।
4: चलो जाना इसे कन्नी को, ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
3: माफ कर दो मुझे, मुझे राम खा हो
4: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमी को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुँच गया और तुम मेरे कदम में।
3: मुझे सिर्फ इतना भी ज्यादा नहीं, बेटी कहाँ है?
4: मैंने तेरी बेटी को अपनी आवाज से समझा, उसे पहले ये लाइन भेजा और ऐसी हफ्ते वापस आ रही है।
3: मुझे एक और सिंह नहीं, प्लीज
4: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
0: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निगाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जानी वाकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहाँ तक के मैंने विलन लोगों को नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर प्राण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसफ की फिल्म में ललिता भाई का नहायती नारायक बेहुदा किस्म का बेटा, तो फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में

मेरो माल बाहर वही खानम ललता भाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललता भाई का क्या बना? छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में आप बना था कौन सी पिक्चर थी? याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे, जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या शौक है, क्या शौक है, 100 मरतबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत सॉन्ग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना है भाई होशियार रहना, बताइए वो कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नर्क में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर सब में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बनाना हूँ, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।
2: शंकर बाबा होके बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार, चले

सोने पर सारे बदन बजाए, कानों में विश्वास का कुंडल दबा के बोल बजाए, हरी माल के बदले गले में, हरी माल के बदले गले में विश्वास को लटकाए, अपने पाल बदली के जाने के लिए।

0: जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गाँव का वाला चौधरी बन गया था।
1: अब देखो ये गाँव में तुम्हार की छेड़छाड़ नहीं चली,
0: चलेंगे
1: उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी। क्या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई
0: ये सब बेकार तो
1: नहीं
0: जाएगी?
1: नहीं नहीं,
0: मगर कौन सी फिर भी
1: है?
0: अच्छा और तुम्हारी माँ छुट्टी
1: आए और नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
2: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर वुलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती ही जवान लड़कियों से चेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहते हैं तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो पति भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
3: दुनिया

0: तड़पे मेरी जवानी, प्यार की आग में तन भगन जल गया, प्यार की आग में तन भगन जल गया, जाने थे तू जलाती है दुनिया मुझे, जाने थे तू जलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन भगन जल गया।
1: मेरे कमाल को हर दिन कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझमें कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सांडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफ़े नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं है। बारी बारी सब उत्पाद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट में लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते कहते हो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: देखिए कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक,
2: ठीक है लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ, हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश में लेना चाहते हो बाबू? मन में भी अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता,
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़ कर आ गया हूँ।
3: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे, ये कहाँ का इंसाफ है?
4: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर, कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के अहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे

0: ग्रम सुल्तान गोद।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गदार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ भी देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती फिल्मों में काम किया।

0: एक बात जोर देकर कहना चाहता है और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष है, वो बुलंदी है जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में सी ए, और भी सलीस हो जाइए। सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाए। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों, तो बात बाहर न जाए वरना।

कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं, जैसे ही लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ हैं, एक दूसरे में, एक दूसरे में दुखी।

मैंने उस दिन पहली बार अपने थिएटर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठे रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शर्म

थोड़ी सी भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़ कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें तो कहा था बस एक को सौ तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और भी।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसी। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में बना देता है मेरे समूचे अस्तित्व।

अंदर नहीं प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं। ये तो एक रूपांतरण है। हाँ एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह ही सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चलना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी कभी वो प्रेम सुबह

0: सुबह और 3 बजे की टिकट बुक करना। सुबह 3 के बाद मुझे टिकट अच्छी है।
1: हाँ 3 बजे, मैं तो 3 बजे बुकिंग हूँ। शाम को बुक
0: करना है। क्या कर रहे हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हमसे मिलकर सुनती है।

0: के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाते हैं कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,358 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति मैंने प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक के गलियारे शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार के 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयेन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स ने कहा कि जो उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के वर्षों के समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मिंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रूपये से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GMSS जर्मन की खरीद के लिए 449 करोड़ रूपये का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू के इनेस क्रिस्टिनो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे के चियु पिंगचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।